0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
3: बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा समस्त उपभोक्ता वर्गमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
4: ए बहिनी, दशैं तिहार आइसक्यो, केही किनमेल गर्ने योजना छैन?
5: दिदी, तर कहाँ किन्ने?
4: कहाँ किन्नु नि? यसपालि त टिकापुरमै गएर एनएस गोल्ड एन्ड सिल्भर उद्योगबाटै किन्ने हो।
5: त्यहाँ के छ र त्यस्तो?
4: त्यहाँ त राम्रो मेसिनद्वारा राम्रो डिजाइनका विश्वासिलो गरी हार, तिलहरी, पोते, चन्द्रहार, नौगेडी, रानीहार, टप, बाला, औठी, सिक्री, नथिया लगायतका आकर्षक गहनाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्।
5: ओहो, त्यसो भए यसपालिको दशैंमा एनएस गोल्ड एन्ड सिल्भर उद्योगमै जानुपर्छ।
3: एनएस गोल्ड सिल्भर उद्योग सुनचाँदी पसल सरकारी अस्पतालको गेट अगाडि कोइजीआर मेडिकल भएको घर। सञ्चालक गणेश साहू, फोन नम्बर 98-22-83-10-54।

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको सुरुवात गरौँ। स्क्रैच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्रैच कुपन, 7 वर्ष सम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्ष सम्म AMC र होन्डाका साथ साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
2: बाबू ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कापिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा की वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यात्मिक खुक्रे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेर सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगरपालिका में कृषि विकास शाखा से किसान उकरण प्राविधिक ज्ञान से लेकर प्रोत्साहन सम के काम करती जलवायु अनुकूलन खेती में किसान उकरण अग्रसर हो पर्न में जोड़। कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष में दिनेश कुमार शाह निर्वाचित बनुआ व्यवस्थापन और बनुआ के आमदानी सही सदुपयोग करना अध्यक्ष शाह के प्रतिबद्धता। जानकी गांव पालिका के दुर्गौली में पहल पटक दुर्गौल की व्यापारिक संध्याकालीन मेला आयोजना 31 गते संचलना मेला के उद्घाटन हुईना। उसूर पश्चिम प्रदेश के बजट भाषण आज बजट शून्यता अंत्य हुई थी। आप पूरा खबर 2082 माघ में शुरू हुईलाक 16 साधारण सभा के बंद सत्र संचालन कर नैसके अवैधानिक रलक कैलाली के जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 जगतपुर स्थित के कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समूह के लव नेतृत्व पाइलवा मंगलवार के दिन हुईलक निर्वाचन में अध्यक्ष के उम्मीदवार दिनेश बहादुर शाह रविन्द्र निर्वाचित हुईलबाटे वहां 624 मत प्राप्त करल बाटे और उम्मीदवार नरबहादुर बोगटी 364 मत कर्णबहादुर चौधरी 255 मत और बप्पल बहादुर रावत से 208 मत पाइल बाटे। उपाध्यक्ष लगायत के और पद में असोज 15 गते हुईलक भेला से निर्विरोध निर्वाचित हो सकल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष में 1,57,94,000 रूपया के अनुमानित बजेट पेश करल कार्य समिति अवैधानिक हुईल पाछे वहां कार्यरत वन हेरालू कर्मचारी समेत 10 महीना से पारिश्रमिक पाइनी सेकल हो। मासिक 2,00,000 संचालन खर्च चहलक बनवामा अब 10,00,000 रूपया जत रखेल मौदात रहल बताइल बा। आर्थिक वर्ष 2081-82 में 1,68,00,000 रूपया के बजेट लानल खड़ग बहादुर शाह नेतृत्व के पदाधिकारी हुकरा व्यापक भ्रष्टाचार करल देखाइल पाछे उपभोक्ता हुकरा एकर विरोध करती रमेश खनाल के सन जगतमा संघर्ष समिति गठन करके लगातार दबाव दैगिल रह। बनुआ में हुईलक अनियमितता के विषय में अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग से छानबीन केला कागजात मार करल पाछे मुद्दा भर चला सकल नहीं हो। बनुआसी विधान में समेत नहीं बनैलक कार्य समिति के निर्णय के भरमा वार्षिक 1.5 करोड़ रूपया खर्च करते आयल रह। सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष शाह दाह संस्कार के लग निःशुल्क काठी वितरण करना उपभोक्ता उपकरण सहजता के लग टोल टोल में काठी उपलब्ध करैना सामुदायिक बनुआ से ट्रैक्टर हे समेत सब वाहन के रूप में प्रयोग कर पैना व्यवस्था मिलैना। कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ से विधान हे समेत समय अनुकूल आवश्यक संशोधन करके हाल कायम रहलक सक उपभोक्ता उपकरण के सदस्यता सुनिश्चित करना सामुदायिक बनुआ के कोषे समेत मद्देनजर करके एक छुट्टे सब वाहन खरीद करना गोलिया काट के समेत कटानियो ढुआनी वाफत के लेटी अलग शुल्क नई लगना समेत प्रतिबद्धता व्यक्त कर गिलवा। यह आर्थिक अनियमितता संबंधी उठलक विषय में निष्पक्ष छानबीन के लग विज्ञ समिति गठन करके सत्य तथ्य सार्वजनिक करना बनुआ की गतिविधि सूचना है पारदर्शी तथा सहज बनेना सामाजिक संजाल और डिजिटल प्रविधि के प्रयोग करना बनुआ के संरक्षण संगे प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकार सुनिश्चित और हित है समेत समान प्राथमिकता देती पारदर्शी जवाबदेही भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था करना शाह की प्रतिबद्धता रहलबा। जानकी गांवपालिका के दुर्गौली बजार में पहल पटक आयोजना हुई लागल व्यापारिक संध्याकालीन मेला 2083 के तैयारी अंतिम चरण में पुगल बा। मेला आज से शुरू हुईना जनाइल बा। दुर्गौली बजार में समेत स्थानीय उत्पादन व्यवसाय और संस्कृति है प्रवर्धन करके दुर्गौली बजार के पहचान के लाग मेलाके आयोजना गर्न लागिल मेलाके संयोजक तथा दुर्गली बजार व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष चन्द्रभान भम जानकारी दिलेबाटै लम्बा समय से बजेट विहीन रलक्सोर पश्चिम प्रदेश सरकार अन्तत बजेट सार्वजनिक गर्न हुल्बा। प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न हुल्बा। कालिक बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के बैठक संध्या 5 बजे प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभा के बैठक बोलाइन निर्णय गरल। सभामुख भीम बहादुर भण्डारी जानकारी दिलेबाटै सरकार से बजेट प्रस्तुतिकरण हुल्पा से सुरपश्चिम के करीब 80 दिन से जारी बजेट शून्यता अंत्य होना देख पड़ल बा। खोजखर माए घड़ी विश्राम विश्राम पाच फेर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: बेला भागन ना चाहती
1: पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुबै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: हाल देश के पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के साथ मनसूनी वायु के प्रभाव समेत बा। देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलल बा। कल से तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलन बा। कोसी बागमती गंडकी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के कम ठाउं तथा लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 ठाउं में मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्ती रहल बा। आज दोपहर के देश के हिमालय पहाड़ी भागमा साधारणतया मौसम बदलन बा। बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बा। बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बदलन बा। देश के हिमाली भूभाग के कम स्थान पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित पथरा पानी सहित के मध्यम खालके वर्षा के सम्भावना रहल बा। लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभागमा कुछ स्थान तथा मधेश प्रदेश लगायत के कोसी बागमती गण्डकी तराई भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित हावाहुरी सहित के पथरा पानी सहित के वर्षा के संभावना देखाइल बा। लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तराई भूभाग में तथा बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल बा। यी वर्ष के दशैं घर जैना यात्रु हुक्रन केलाक यह असोज 23 गते से लैके टिकट बुकिंग खुला करगिलवा। यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सितौला विभाग के महानिर्देशक राजीव पोखरेल सहित के पदाधिकारी सहित के बैठक बैठके निर्णय करल के हो। बैठक पश्चात महानिर्देशक पोखरेल से दशई के यात्रोकरण सहज सुरक्षित हो व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करकलाग असोज 23 गति से लेके अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करना समेत जानकारी दे गेल बा। दशई घट स्थापना से लेके पूर्णिमाश्रम के नेपाल भरिक रूट परमिट खुला रहना घट स्थापना में समेत 25 असोज सम समेत पर्लक बताए गेल बा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय राजपत्रमा अंकित द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह के समेत 44 कर्मचारी उपकरण सरवा करल बा। शिक्षा प्रशासन और इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारी उपकरण एक साथ सरवा करल बताया गया। सरवा होना लोक बहादुर लोपचन सक गोहनाथ गौतम गोमा देवी चेमजोंग वासुदेव रेग्मी विनोद कुमार पोखरेल सीता परियार मेघनाथ पाध्याय उसका वेदनिधि खनाल कल्पना घिमिरे नेपाल उसका चेतराज बराल धरबाट उसका दिल्ली निरौला दीपक केवाली गंगाधर पौडेल टेकु कुमारी रेग्मी चित्रांक बराल दीर्घराज उपाध्याय रामप्रसाद घिमिरे जयराम श्रेष्ठ रोजेन्द्र बहादुर अर्याल शिवप्रसाद लम्सालफे सर्वहिल बतागिल बा। नेपाली कांग्रेस के 15 महाधिवेशन में पदाधिकारी हुकरण के तमाम पद के उम्मीदवारी तय प्रारंभिक नामावली सार्वजनिक करल बा। कांग्रेस के केन्द्रीय निर्वाचन समिति से उम्मीदवार के प्रथम नामावली प्रकाशन करलक हो। सभापति में एक वरिष्ठ उपसभापति में एक सहित चार जने उपसभापति महामंत्री में तीन सहमहामंत्री में 15 कोषाध्यक्ष में करके एक जने करके 24 जन के पदाधिकारी उपकरण के व्यवस्था करगिल बा। सहमहामंत्री में चार जने और कोषाध्यक्ष में एक जने सभापति से मनोनीत करना व्यवस्था बा। वहां अनुसार निर्वाचन होना पदाधिकारी के संख्या 19 जने होने बा। कलसे निर्वाचन समिति से सार्वजनिक करल सूची अनुसार 19 जने पदाधिकारी के लाख 71 जन के उम्मीदवारी परल बा। पार्टी सभापति के लाख 3 जन के उम्मीदवारी परल बा। सभापति में वर्तमान सभापति गौरव कुमार थापा पूर्व सहमहामंत्री किशोर सिंह राठौर पूर्व क्षेत्रीय सभापति श्याम कृष्ण खड़का के उम्मीदवारी परल बा। उसको वरिष्ठ उपसभापति में विश्व प्रकाश शर्मा खुला उपसभापति दुई पद के लाग गोविंद बहादुर भट्टराई चंद्रकांत भंडारी प्राध्यापक डॉ चंद्रमोहन यादव दीपक गिरी देवराज चालीसे धनराज गुरूंग मधु आचार्य डॉ मिलेन्द्र प्रसाद रिजाल और सुरेन्द्र राज पांडे के उम्मीदवारी परल बा। महिला उपसभापति एक पद के लाग पुष्पा भूषाल समावेशी उपाध्यक्ष में एक पद के लाग जीवन परियार फर्मुला मंसूर विनोद कुमार चौधरी रंजित कर्णावसिता गुरूंग के उम्मीदवारी समेत परल निर्वाचन समिति से जनायल बा। उसके खुला महामंत्री दुई पद के लग अमर सिंह पुन उदय शमशेर राणा उसको गुरूराज घिमिरे नयन सिंह मोहर प्रदीप पौडेल डॉ सुनील शर्मा डॉ संतोष उपाध्याय के उम्मीदवारी परल बा। कलश महिला महामंत्री में डॉ दिला संग्रौला पंत महालक्ष्मी उपाध्याय उसको रीता खनाल के उम्मीदवारी परल बताइल बा। खोज घर में एक घड़ी विश्राम पाछ फिर से सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
2: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417।
7: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाउ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पाछे फेरसे स्वागत बा। सरस्वती मावी दुर्गौलीके सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई हिलवा सामाजिक परीक्षण समितिके संयोजक असमानी चौधरी के अध्यक्षतामा हुई कार्यक्रममा गाउँपालिकाके अध्यक्ष गणेश चौधरी प्रमुख अतिथि रहल रहे। सघ एक नम्बर वार्ड अध्यक्ष सुरेश चौधरी विशिष्ट अतिथि रहल रहे। कार्यक्रममा शिक्षा अधिकृत धर्मनन्द कपाड़ी, समाजसेवी चन्द्रभान बम, कुलासिंह बम, ओसक ओम प्रकाश चौधरी, राजेश कठाइट, अनिता चौधरी लगायत से बोल रहे। कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक खगेन्द्र प्रसाद उपाध्याय आर्थिक वर्ष 2082-83 के सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतकरण विद्यालय के शिक्षक गणेश ओझा जानकारी दिले बाटे। कार्यक्रम संचालन शिक्षक कर्ण बहादुर बोहरा, स्वागत सह प्राध्यापक मोतीलाल चौधरी लगायत से कर रहे। कार्यक्रम तमाम सांस्कृतिक फेर प्रस्तुत कर गिल रहा। दशैं देवारी तथा छठ पर्व है सुरक्षित शान्तिपूर्ण और मर्यादित रूप में सम्पन्न गराइन जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन में लानल बताइल बा। त्यौहार के बेला में हुईना समेत यात्रु आवागमन बजार में समेत फे बढ़ना भीड़भाड़ तथा आर्थिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि हो। सीमा क्षेत्रमा हुन आवागमन हे लक्षित समेत गर्दै प्रहरी से सुरक्षा योजना लागू करल बा। सुरक्षा व्यवस्था केलक कैलालीमा 1146 प्रहरी परिचालन करगिल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली से जनाइल बा। यह समाचार संगे खोज खबर ओराइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष में दिनेश कुमार शाह निर्वाचित। बनुआ व्यवस्थापन और बनुआ के आमदानी के सही सदुपयोग करना अध्यक्ष शाह के प्रतिबद्धता। जानकी गांव पालिका के दुर्गौली में पहल पटक दुर्गौली व्यापारिक संध्याकालीन मेला आयोजना 31 गते मेला संचालन करना आज उद्घाटन हुआ। कांग्रेस के 15 महाधिवेशन के तमाम पद के उम्मीदवार के प्रारंभिक नामावली। सार्वजनिक को सुदूरपश्चिम प्रदेश के बजट भाषण आज बजट शून्यता अंत्य हुई थी। बीटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकिया बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम रह।
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
4: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
3: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खप्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
4: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
3: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688008 र 98253677272।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक्ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे, वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: आरती ब्यूटी एण्ड कस्मेटिकमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
5: सञ्चालक आरती चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98624-70483।

0: आई लभ यु टु हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मई नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थो
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

जीरापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए
1: कॉफी रेडी।

0: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुस 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 सम्पर्क गर्नुहोला। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस त?
2: मै नै जाइँ, उहाँ अपन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर छु।
1: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका मे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
3: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, प्लाजा तथानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
4: एल्विस एल्विरा ट्रेडर्स टिकापुर 1 व्हाइट हाउस को तल सरेको जानकारी गराइन्छ। संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 98-11-67-38-87।
5: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछा से सुरु करल मने घर सिर्जा सेकल?
6: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
5: मिस्तरान बर्दन उनका ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाटा, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना, वट्टा फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रख घुमा जाए ता था पाए।
0: यूपीवीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टिशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशिष्ट हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: होन्डा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होन्डाका साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
4: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417।
5: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्त रह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको अन्ल बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली
3: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
4: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
4: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गया झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर पे करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 9894822373
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भाई जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848578228

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर से मई गीता चौधरी राम राम। अपना ओकरा बस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो ओ नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज देश के विभिन्न ठाउँ में सामान्य थे से भारी वर्षा, शनिवार थे से मौसम में सुधार आईना। 25 वर्ष पाछा जनक सहित परिवार सहित घर फिर्ता परिवार में खुशियाली। कांग्रेस महाधिवेशन में बंद सत्र शुरू, 4 प्रतिवेदन पास करना सभापति के उम्मीदवार राठौर से उम्मीदवारी फिर्ता। ओ कैलाली के दुर्गौली में दुर्गौली व्यापारिक संध्याकालीन मेला आज से शुरू। आप खोज खबर विस्तार में। आज देश के अधिकांश ठाउँ में वर्षा हुई लग ओ यी क्रम शुक्रवार सम्म जारी रहना हुई बा। शनिवार थेसे मौसम कर्मश सुधार हुईना। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा बटवैलबा हाल देश मन पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के संग मनसूनी वायु के प्रभाव समेत रहलक। उहर्से आज पूर्वी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप में कम वर्षा हुई लसेफे बागमती गण्डकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश की एक दुई ठाव में भारी समय के वर्षा हुई नुलवा। अब फे बागमती लुम्बिनी गण्डकी प्रदेश के कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुछ ठाव में मेघगर्जन चट्यांग हुरी व असिना सहित मध्यम वर्षा हुई तीर अलग विभाग से जनागिल्वा। शुक्रवार समय वर्षा के संभावना रहलक। वर्षे पकलक धान निकाट समेत मौसमविद किसान हुकन आग्रह समेत कलबाट। जानकी गांवपालिकाके दुर्गौली बजार में व्यापारिक संध्याकालीन मेला 2083 आज से शुरू हुई बा। दुर्गौली बजार के आयोजना में शुरू हुई लक मेला सुदूरपश्चिम प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री इंदिरा गिरी उद्घाटन कलबाट। मेला के उद्घाटन करती मंत्री गिरी भारी विकास से फे असीन किसिम के मेला महोत्सव से यहां के उत्पादन के बजारीकरण हुई ना व युवाओं का स्वरोजगार रोजगारी पैना बटुलाट। यी मेला से यहां के सांस्कृतिक संभावना हना पहचान करक आग बढ़ सेकल से पर्यटन के विकास हुईना व उही से आय आर्जन में समेत सहयोग पुग्ना बटुलाट। कला संस्कृति तथा व्यापार दुर्गौली बजार के मूल आधार कना नारा के संग आज थे से 31 गते सम संचालन हुईना मेला में स्थानीय थे से राष्ट्रीय स्तर सम के कलाकार हुकन के सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना आयोजक जनैलबा। मेला में विभिन्न परिकार के खाना के स्थल व्यापारिक तथा कृषि सामग्री के प्रदर्शनी स्थानीय कला संस्कृति के प्रस्तुति मनोरंजनात्मक कार्यक्रम लगायत के गतिविधि संचालन हुईना आयोजक से जनागिल्बा। संजेक समय में विशेष सांगीतिक कार्यक्रम सहित कलाकार हुकन के प्रस्तुति रहना हुईलक। वर्षे मेला अवधिभर दुर्गौली बजार में मनोरंजन के विशेष माहौल बनना अपेक्षा करगिलबा। मेला संजेक समय में हुईना हुईलक। वर्षे व्यवस्थापन तथा सुरक्षा के लाग स्वयंसेवक को प्रहरी परिचालन कलक आयोजक जनैलबा। तेरह वर्ष के उमेर में तत्कालीन नेकपा माओवादी के जनमिलिशिया होकन घर से निकरल हुईलक अछाम के रामारोशन गांवपालिका छ परिवन भटा काटिका के जनक साउट 25 वर्ष पाछ टीकापुर फिर्ता हुईलबाट। 58 साल फागुन 1 गते अछाम के सदरमुकाम मंगलसेन मन माओवादी आक्रमण करना तैयारी करती रलक बेला जनक बेराम होकन घर आयल रल। माओवादी घर में पैठबेर सरकारी पक्ष के निशाना पर्ना खतरा देखैटी गांवले घर छर आग्रह करल पाछ जनक साउट घर छोड़ल रह। जनक भारत के लखनऊ पाछ अग्रा दिल्ली मुंबई हरियाण कुरुक्षेत्र अम्बाला हुईती हिमाचल के सिमला पुकन काम करलबाट घर आई लागबेर दुईचो डगरी में लुटगिल पाछ उहर घर जमकर के बैठलक बटुलबाट। बेहोशुलक बेला सहयोगना परिवार के छाई के संग जनक के भुआज हुईलक श्रीमती माया साउट बटुलबाट। अब कवाड़ कारखाना में काम करना जनक के श्रीमती माया उहो कंपनी के मने हुईलबाट। भूमिगत हुईबेर अछामो कालीकोट में कार्यक्षेत्र बनैलक जनक भारत भाजगिलक 7 वर्ष पाछ रोल्पा के संगरिया नेपाल मन माओवादी सत्ता ओरैलको नेता हुक र देशके नेता मन्त्री हुइलक शान्ति हुइलक थाहा पैलक बटुलाबाट जनक भारत पैठल सेफे उहाँके परिवार ज्याजती दुख पैलक भाई जगत साउत बटुलाबाट जानकी दाई कन्धरी साउट श्रीमान हेरैलक 25 वर्ष पाछा छावा आइबेट 4 वर्ष छावा डेक मनमा हर्ष लगलग बटुइलबाट हाल टिकापुर स्थित सुकुम्बासी शिविर स्थित घरमा पुगल हुइलक जनकके आगमन से परिवारमा खुशी छैलबा आ भुकनके नागरिकता ओ छाइ छनके जन्मदाता आवश्यक रहलक भैया बहुर्या दीपा साउट बटुइलबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्तिरै सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्न आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुइलकमा र बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध गरती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल भिडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड्नी सेवा टुटल हाट जोड्नीमा प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जाँच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
4: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
3: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
5: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
6: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
5: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
6: त्यसो भए आजै जाउँला नि
5: ल अरूलाई पनि भनौँ है
6: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
6: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। लम्बा समय थिसे बजेट विहीन रहलक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार। आज बजेट सार्वजनिक कर्णाफिल बा। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत कर्णाफिलक हो। काली बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के बैठक से आज संध्या से बजेट प्रस्तुति के लागि प्रदेश सभामा बैठक बोलेला निर्णय कलक सभामुख भीमबहादुर भण्डारी जानकारी देलबाट। सरकार बजेट प्रस्तुत गर्न कहलपा छ। सुदूरपश्चिम करिब 80 दिन थिसे जारी बजेट शून्यता अन्त्य होइन देखिल्बा। यसै आग सरकार गैलक असार 1 गते प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्ष के बजेट प्रस्तुत कर्ल रह। तर बजेट उपर के विवाद के कारण पारित हुई निस्याकल्पा छ। साउन 1 गते से प्रदेश सरकार बजेट विहीन अवस्थामा पुग्लक हो। बजेट के विषयमा देखिलक विवाद के कारण कांग्रेस नेतृत्व के सरकार ढलल रह। वाकर पाछा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्वमा लौ सरकार गठन हुइल रह। नेपाली कांग्रेसकै महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र शुरू हिल्बा। बन्द सत्रमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा कोषाध्यक्ष 4 प्रतिवेदन पास गर्नबा। वाकर पाछा लौ नेतृत्व चयनकै लागि मतदान के काम बाँकी रहलबा। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज 22 गते बिहान 7 बजे से मतदान शुरू गर्न तयारी बा। यी महाधिवेशन से सभापति 1, वरिष्ठ उपसभापति 1 सहित 4, उपसभापति महामन्त्री 3, सह महामन्त्री 15, कोषाध्यक्ष 1 कैक 24 जना पदाधिकारी चयन मितिबाट। वस्तकन सह महामन्त्री बन्न 4 जना व कोषाध्यक्ष 1 जना सभापति मनोनित गर्न व्यवस्था बा। उह अनुसार निर्वाचन हुन पदाधिकारी संख्या 19 जना केर हुया बा। नेपाली कांग्रेसकै सभापतिकै उम्मेद्वार किशोर सिंह राठौर उम्मेद्वारी फिर्ता लिहलबाट। उहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गर्क उम्मेद्वारी फिर्ता लिएलक जानकारी देलबाट। यी स्याग मंगलबार सन्ध्या अन्तिमसम्म उम्मेद्वारी दर्ताकै अन्तिम समयमा नै उहाँ सभापतिमा उम्मेद्वारी दर्ता करैल रहल। उहाँ कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुइलक वर्षे कौनो फे नेता हन निर्विरोध निर्वाचित हुइनाकैक चुनावमा जाइ नै हुइना बटुटी। सभापति गगन कुमार थापाकै जत्रा फे लोकप्रियता हुइलसे फे चुनाव लड्ना बटुटी आइल रहल। खोज खबरमा फेरफे विश्राम। विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
9: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जनऊ का न घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट। आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848541436।
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग रोगको समस्या। पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने। कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डी फोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
13: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एकल महिला उद्यमी हन 2,00,000 सम्मके प्रविधि सहयोग गर्न हुल्बा। वस्तक महिला उद्यमी समूहमा 3,00,000 सम्मके प्रविधिमा सहयोग गर्न कलबा। महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा, पुँजी वा प्रविधि सहयोग सहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहमा उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यी सहयोग गर्न हुलखो। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हासे स्विजरल्याण्डके फेडरल अफिस अफ कम्युनिकेशनका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार इसाबेल लोएस शिष्टाचार भेटवार्ता कलबाट। ऊ भेटके क्रममा नेपाल र स्विजरल्याण्ड बीच सूचना तथा संचार प्रविधिकी क्षेत्रमा सहकारी वा सहयोगकी विषयमा छलफल हुल्बा। संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा विभिन्न क्षेत्रमा स्विजरल्याण्ड सरकारसँगकै सहकार्य तथा प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप सहकारी वा सहयोग विस्तार रह कर नेपाल इच्छुक रहलक बटुलबाट। भेटमा डिजिटल सुरक्षा, सार्वभौमिकता, डिजिटल अखण्डता तथा सूचना प्रविधिकी विकासले नेपाल प्राप्त गर सेक्ना लाभके विषयमा फेरि छलफल हुल रह। उह क्रममा संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा नेपाल डिजिटल रूपान्तरण अन प्राथमिकतामा धर्क काम गर्दै रहलक उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भित्राई वातावरण सहज बन्ती गिलक बटुलबाट। वरिष्ठ नीति सल्लाहकार लोएस सन् 2027 जुन 21 र 22 स्विजरल्याण्डके जेनेभामा आयोजना हुन एआई ग्लोबल समिट 2027 नेपालकै सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गर्ल। वहाँ सम्मेलनमा नेपालकै तथा सम्बन्धित सरकारवालाकै प्राथमिकता बारे जानकारी लिएर रह। भेट मन फ्रीडम अनलाइन कोलिसन मन नेपालकै सम्भावित सहभागिता तथा पर्यवेक्षक के रूपमा नेपालकै भूमिका के विषयमा छलफल हुल रह। हाल 42 सदस्य राष्ट्र रहलक ऊ गठबन्धन इन्टरनेट स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता तथा अनलाइन अधिकार के प्रवर्धनमा सहकार्य गर्दै आइलबा। एमन सरकार लुठी विद्रोह विरूद्ध सञ्चालन करगिलक स्थलगत सैन्य अभियानसे प्रगति हासिल गर्तिरलक दाजी कलबा। सुरक्षा तयारी बढ़ैना विषयमा अधिकारी हुकनके बीच छलफल हुइतिरलक बेला सरकार असीम जानकारी देलक हो। सरकारी समाचार तथा सावाके अनुसार प्रधानमन्त्री साय अल जिन्दानी मंगलबार एडेनमा मन्त्री हुकनसे भेट गरिकन सैन्य अभियानबारे छलफल गर्ल। वहाँ सुरक्षा तयारी बढ़ाई, महत्वपूर्ण संरचनाकै सुरक्षा गर तथा सरकारकै नियन्त्रणमा फर्कना क्षेत्रकै आ लागि आवश्यक तयारी पूरा गर निर्देशन देलबाट। वहाँ अभियानकै उद्देश्यबारे जानकारी गराई वा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाई कूटनीतिक प्रयास थप तीव्र बनाइफे आग्रह कलबाट। लाल सागर वा बाल अल मनडेफ समुद्री मार्गमा हुन समुद्री यातायातकै सुरक्षा किलाक समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइपना उहाँके कहाइबा। समाचारकै सँग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जैति जैति खबरकै मुख्य शीर्षक फेर्से। आज देशकै विभिन्न ठाउँमा सामान्य थिएसे भारी वर्षा, शनिबार थिएसे मौसममा सुधार आइन। 25 वर्ष पाछा जनक सावत परिवार सहित घर फिर्ता, परिवारमा खुशियाली। कांग्रेस महाधिवेशनमा बन्द सत्र शुरू, 4 प्रतिवेदन पास गर्न सभापतिकै उम्मेद्वार राठौरद्वारा उम्मेद्वारी फिर्ता। म कैलालीकै दुर्गौलीमा दुर्गौली व्यापारिक सन्ध्याकालीन मेला आज से शुरू। लिता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार नेपाली भाषामा 6 बजे खोज खबर सुन सकबी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देति। मै गीताफी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि। राम राम।
14: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: लभ इट टू हामीलाई मनपर्छ भने भगवानलाई पनि मनपर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वान नन्दिक भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
2: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुगर बनाएको न ल बाटी।
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई।
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर प्रहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुनसानी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261।

0: हिन्दूहरूको महान पर्व बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हार्दिक सुनचाली पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चापकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: हार्दिक सुनचाली पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, सञ्चालक शंकर साहु, सम्पर्क नम्बर 9848421974।
2: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
3: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
8: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
9: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल हे रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला जस कटरस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
4: काठमाडौँ स्थित घरेलू कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
3: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक आवश्यक संख्या पुरुष एकजना महिला एकजना तथा अन्य एकजना सम्पर्क फोन नम्बर 98541-00725 इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।